आओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूंडी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में ना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा। निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरमुख राम जप हो रस रसना इन विद तार तू तारी बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

बाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर

दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन

सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जम जाली रहाओ, गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

जिसको तुम्हार राख्या पावे तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तें भरपूर, तू जल थल महियल।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध

दस मिर्गी सहज बांध्यानी, पांच मिर्ग बेधे शिव की बानी। संत संग ले चढ़ो शिकार, मृग पकड़े बिन घोर हथियार रहाओ।

रहाओ। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा, सतगुरु सेव सर्व फल पाए।

आओ। तब्त बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट पहे गोपाल, तां कै दर्शन सदा निहाल।

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रहे।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया। साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाइयै। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै, जन्म पदार्थ पुन

आस पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रब रहया गुर मिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख तनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला।

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

संग सहेरी प्रया बचन उपहास कहो, जौ सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो।

पंजवा तांते करन पलाह करे महाविकार मोह मद माताओ सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह धन ओए जन्मे।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

साई। एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाण, शब्द मरै तां सब किछ सूजै अनदिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै, होर

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन ए प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जग तरावै रहाओ, जो गुर पौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे।

दिवसै हो तिन कह सद बल जांत ज्ञानी हर बोलह दिन रात तिनकी तृष्णा पूख सब उत्तरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परम हो सुख जन।

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जात है सुख सा।

सार्थक है। साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ

सबर अंदर साबरी तन एवा जालेन होन नजीक खुदाए दै होन नजीक खुदाए दै पेतना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

मुन जन गाव है अचल छला। गावे गुण तोम अटल मंडल वे, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जत।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो।

जंगम सर्प है जग घेरिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगर्ड शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल होए।

हर का नाव अत बड़ ऊंचा, ऊंची हूँ ऊंचा होई, अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई, मुख संजम हच्छा ना हो वई,

सोए, जित मिलिया तिख उतरै तन मन शीतल होए। वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिसनो समत सब कोए, वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिसनो समत सब कोए, वाह वाह।

सतगुर पुरख हर ध्यायदा, सतसंगत सतगुर पहाए, सतसंगत सतगुर सेवदे, हर मेले गुर मेलाए। एहो भौजा।

द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सच्यार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निर

मुख वेदं गुरमुख रया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा इक देव बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा, विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जग कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न।

सिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कौन का विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख बाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करें पार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ठाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिस फुरमाए तिव तिव पाहे, जे ताकी ताते तानाओ, विण नामे नाही को थाओ, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। परिय हथ पैर तन देहे, पानी तो तै उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लई है ओ तोए, परिय मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज

आने सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलनाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कमन सो वेला वक्त

कवन छित कवन वार, कवन से रुक्ति महाकवन जित हो आकार। वेल न पाया पंडती जे हो लेख पुराण, वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख कुरान। चित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। किव कर आखां किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे किस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत न करने देन न अंत अंत न देखन सुन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत।

ऊंचा नाव केवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारक करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की शुद्ध कर्म

विचार नानक कथना करड़ा सार जट पहाड़ा तीर सुनियार एरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत चित ताल करिए शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर तर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सोदर राग आसा महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद हो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्व समा

जाए न जाती, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखे कीता अपना, ज्योतिष दी वड्याई, ज्योतिष भावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पाता उसा पत साहिब, नानक रहन जाई, आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा दिशा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह ना जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया, तुदवीन सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाया, आखन वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा मेला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख, तो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए राव, साचे नाम की तिलवट आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखन पाए, वदा न हो वे काट न जाए,

हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। हम चीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुरमस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आ गए कर तरया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया तू के कास्त हरिया रहा। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोसा पिस्पा छह बतरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया। सब निधान दस अक्त सिधान ठाकुर कर कल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाये तेरा अंत न पारा वरया। रागा समय

का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिरज सब उपाय जी तुझ आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जती पति नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनकू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन।

छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, हो कर राख वडाई तोए, रहाओ रिश्वे चस्या गरिया पहरा, थित्ती वारी माओवा, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेश, राग तना श्री मैला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, रूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए, पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरे नाए वासा, रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिल डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आउद कटे दिन सुरैनारे, मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाव

आओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड आखा ना। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल वाइया, पढ़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कट नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सत जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगे आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला।

कारमंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद पावसी होर आ

साल बिन पौड़ी गर क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाव गुर सर सागर बोहे तो गुर कीरत दरियाओ जे किस पा

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवै पत उगवै गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा।

नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला। तात मिले पुन तात कहो सुस्ति सुप्त समाए लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप एक।

विचार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साद के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर जे तन कंत न भावई ता सब अडंबर कूड सब रस पोगन बाद है सब सिदार विकार जब लग शब्द न पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक।

राम जपो गुण सार, हौ मैं ममता मोहनी सब मुट्ठी अहंकार रहाओ। जिनी नाम विसारिया दूजी कारे लग, दुबदा लागे पच मोए अंतर।

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया, मन माया मोह मनूर,

निर्मल मैला ना सिया शब्द रते पत होए। इन मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन रात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभु।

गुरुमुख कूड़ न पावई, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावई, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले, सच्चे सच समाए, मन में मान

नानक गुरमुख पाई दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला परमे पाए ना विजवे जे पवे दिसंतर देश।

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेत्यो, सो पौ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

कैसी वस्त विसाई है, जैसी निभ नाल अग्गे साओ सुजान है, लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

आओ ऐब तन चुकड़ो इन मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बाने इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

काजमी जाने नाम खुदाई, जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया।

नाल पलक पौके सदा बयाल कूड़ सुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुकम सोई।

आपे सच पावे तिस सच, अंधा कच्चा सच न सच रहाओ, जाके रुख बिरख आ राओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फुल पाओ फल लिखिया पाए,

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ त्याई।

आओ। जिन्ने सतगुर सेविया तिन्ने पाया नाम निधान, अंतर हर रस रव रहा चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगाशिया लागा सहज त्यान, मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान, सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हौ मैं ममता मार के हर राखिया उधार, हौ तिन कै बलिहारने जिना नामे लगा प्यार, सेई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार, गुर मिले नाम पाई है चूके मोह प्यास, हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास, जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास, नानक नगरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा। बो पेश कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए, हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए, मन रे गृही माए उदास, सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव, गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए, हर का नाम त्याए सत संगत मेल मिलाए, जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए, बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाए, हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए, तिना पिछे रिद सिर फिरे ऊना तिल ना तमाए, जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए, जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पढ़ पंडित जोत की वाद करें विचार मत बुध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआ।

सेवा पवे सब थाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

गुरमति सालाए सच हर पाया गुणतास, शब्द रते से निर्मले हों सद बलिहार जास, हृदय जिनके हर वसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए। राव हर संतो देखो नदर कर,

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, इनके मुख सद उजले सच्चे दरबार, ओ अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। पाउरे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मलहों में कदे तोय राव। मन मुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। इनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार। पाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम ते आए रहा। हर पगत हर का

जाए। अंदिन नाम तियाये सहजे नाम समाये, अंदर रचे हर सत्स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए, गुर शरणाई सुख लहे अंदिन नाम तियाए रहाओ। साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए, गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार, बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार ना पार, गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए, शब्द ना चीने सदा दुख हर दरगे पथ होए, होमे गुरमुख होये नाम रते सुख होए, मेरे मन एनस पूर रही नित आशा सतगुर सेव मोह।

अहनस भगत करे दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु दिखा लिया, हर रस पिया अघाए, जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग, मन मुख फिरे ना जाने सतगुर हो में अंदर लाग, नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग, श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन तावत ता रह जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसै महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए। असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ।

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीर।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द

जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई, हर जियो साचा साची बाणी।

देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसदी कीम न पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई, अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई, हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई, श्री राग महला तीजा। तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे, मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए, गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए, सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए, जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए, चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी अवर न करना जाए, मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार, एनस हृदय रव रहे।

अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है सद पै

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए। मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए। अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए। रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार। मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार। होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुर पाई है विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया।

आया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौं मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौं मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौं तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौं तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत।

मन तन शीतल सात्स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज।

अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हों मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए बिन नामे सब डुमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए परम पुलाना अंदुला।

जिना सच नाम आधार, गुरु शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाय प्यार, कृपा करके अपनी दितोन भगत पंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाये हर स्यों रह समाए। रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई है।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

सच सलाही सच लगा सच्चे नाए तृप्त होए गुण विचारी गुण संग्राहा अवगुण कड्डा तोए आपे मेल मिलाएदा फिर भी छोड़ा ना होए नानक गुर सलाही।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवर पाया आपना हों मैं दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे आपना हों

पाए। अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार, तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान, आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान, शब्द नाची ने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए, नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए, मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जे सो तीर्थ नाए। बहुविद कर्म कमाव दे, दूनी मल लागी आए, पढ़े मैल ना उतरे पूछो ज्ञानिया जाए। मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले कर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुरु जेवड अवरना कोए हों गुरु शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे।

कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन ना थी है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागीन बस काल ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हों पंथ दसाई।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाय पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी।

लाए, ओए सतगुरु आ गए ना निवे, ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आठवें, रैन सवाई जाए, आव कटे नर न बुझे, नित मूसा लाज चुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए। पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मनिए, हर आप ले गल लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए। अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चे शोभा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाया, तिना सबको कहे सब।

रस भोगे खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमायसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

आ सोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहते परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो।

होया तीजे चाक्ष खाया चौथे पोर पया तद ही चितना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

सत जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यो चित लाए एकस बिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माए रहाओ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बां पकड़ गुर का।

अपनाओ। आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ। तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए, जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए। साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास, सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडियाया।

उपाव स्याणप सगल छड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन की

जवा जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम से आए।

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रव रहे।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतरजामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजने।

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सिओ मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोई रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए।

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला करथा पिया अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उरधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मन मुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहूणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल सतगुर के उपदेश है विसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अब गुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच परीत चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजवा सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ मेरे मन हर पज सदा एक रंग कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार श्री राग महला पंजवा रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार सदा सदा सालाही है अंत न पारावार
परवदगार साला ही है जिस दे चलत अनेक सदा सदा आरा

संत जनो मिल पाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड अवर ना कोए दूजा छाओ ना कोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेय रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहा।

जाओ। दुख कलेश ना पाओ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटे।

पाखंड प्रेम न पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तक।

लाली माने नाओ साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ सबद रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत

आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुरु राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरुवाक तित तन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

मुख झूठ है झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांझी है साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीणी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है। रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन मांडी चूरे ज्यों जा

नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी पिर रावे गुण नाल काम काम ना आवे खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार आवन

अवगण त्याग समाई है, गुरमत पूरा सोए रहाओ। विन राशि व पारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कार अपने चले कारज सार, वन जारिया स्यो वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोहना किया करने हार, रव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार, हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए, कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए, सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए। श्री राग महला पहला, सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम ते आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग,

गुरमत पत सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवऊ बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मंथन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए। गुरमुख

छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरखरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ।

मार ज्ञात साचो साहिब सेवियै गुरमुख अकथो काथ। आवे जाए पवाइए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमत मिले मिलाए। तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हों मैं ममता जल बलो।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कणो,

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए तब पाये, सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो नाक तई, जे सतगुर पेते सोए, ज्ञान पदार्थ पाये।

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पति आए, मनमुख सो जीना पवे विचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मनमुख पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरुदिन को ना दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोला।

आशा अंदर जमिया आशा रस खाए आशा बंद चलाइए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे खाई एक तू जो पावे त्यों रास गुरमत साचा मन वसे नाम पलो पत साथ हो मैं रोग दवाई है।

जिन कन मन साज सुधारिया तुस सुरती निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम है तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए। हर नाम है तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी।

बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सचो ओर है सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखी है नीच ना दूसे कोई इतने पांडे साजे इक चानन के हो लोए कर्म मिले सच पाये थोर बख्श ना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकथ कथा विचारिय जे सतगुर माहि समाए ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

ऊंचो पर्वत गाथड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पावजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाओ। रहाओ चला चला जे करी जाना चलनहार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिया खप खप मोए असार। सोयना रूपा संचिए माल जाल जंजाल, सब जग में दो

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर सारा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बै

खाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे देवड़ियाई, आपे सेव कराए। देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल न जाए। सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों में मोह चुकाया, जिस यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों में तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभु आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जमदंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पान

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुमाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ।

अंतर सांस न आवई ना सच लगे प्यार। गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार, सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार। आए से

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर नहीं चल पाये ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर के अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए। पाप पड़े ना बुझई तेसी परम पुलाए, गुरुमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरुमति सह सुवाए, बिन सबदे जग दुखिया फिरे मन मुखानो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया पूले सिद्ध फिरे समाज ना लगे सुवाए। तीने लो व्याप्त है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाये।

आए बिन शब्द परम न चूके न विच्चों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्दे हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुवाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर्षा लाहिए कर्म प्राप्त होए श्री राज महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए

कार कमाए, सिर वडपा जी जिनी पाया सहज रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मन मुख कर्म कमाए।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाहिए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख्यो राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

सागर बिचरे, तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे, खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलक सिकदारिया रस पोगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार, रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा, जितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया, बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचर।

नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुध खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाह जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करम चुकाया दुर्मत का दुख कटिया पाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरिया पगता।

सतगुरु बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो। औ सतगुरु विटों कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गो

निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगी आईया मैं रात दिहे वडे आईया

तिस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इठड़ा अम अबे थावो मिठड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित ना जानदा हर इक तै पारे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोगो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ मा हर पिंड।

ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ।

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई एवन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटै जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए। अंतकाल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने नवैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे पराको ताना गुण अंतर नाही।

वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ नाहे।

अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान पर चंड बलाया बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हो मैं रोग।

सेव करे हर जप सुहेली विच सौरणे खरी सोहंदी सौरणे विच खरी सोहंदी जिन पेव करे नाम संभालिया सब सफल हो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सब सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रलै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा लें

काम से आया। हर पुरुष ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम।

मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरसा कोई न जाए मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे गुरपुरा पे तैवड पागी आठ पहर प्रभ जापे आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेरे निचल आसन पाया तै जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्रगुप्त का ताग दुफारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुखे गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विचुनिया अंतर बाहर सर्वत रव्या मन उपजिया दिशासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पी अघाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्व सुखा कर दीना नानक सिख संत।

तू मिलियो हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए, गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया, दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भये, मन सर्व सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया, इच्छ पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोया, दखना साईं नाम अमोल।

कुल तारिया जियो, जिनको साधु संग नाम हर रंग, तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, पूरन कृपा प्रभ करी, कर गहली ने हर जसोदी ने, जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया, कथन न जाए अकप स्वामी, सद कह जाए नानक।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा खट खट रमैया सोए। सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया।

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, दुर्मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए, वडपागी गुर पाया गुर सबदी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा, हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा, हर आपे

राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तर हर किस बिन कोई नाहे डर परम पौ दूर कर हर किसे नो सालाहे जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिख

पीवे कोई आप छूटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुपीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत कर कै वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना।

मनोख सुद्धा कालिया बार चिटविया रीसा करे तिनाड़िया जो सेवे दर खलिया नाल खसमे रतिया माने सुखर लिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर सुद्धों बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग दिन खोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूर्ख अंध गवार।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाए जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंधले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया सत नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वडियाई वड्डे

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियो।

गुरमुख जिन्नी अरादया तिन्नी तरिया पौ जल संसार सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा कारा अंदेसा क्यों कीजे जाना ही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा सालायो भगत।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुख